0: तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।
1: بعضكم لبعض عدو

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में. सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में.

0: मेरे जो लिसनर्स हैं दे आर खामोश लिसनर्स.
1: अच्छा.
0: ठीक है, साइलेंट पीपल. दे कैन नॉट कॉल अस और फॉर एनीथिंग फॉर एनी रीजन, क्योंकि वो बैठ के सिर्फ इंजॉय करते हैं, सुनते हैं. जो इसको क्या वो खामोशी तोड़ेंगे और डस लेंगे आपके साथ. ये जो आपके 8-10 लिस्टर्स है ना, ये ऐसे जा रहे हैं. तो ये बात ये करते हैं, कौन किसी को जादू देता जी आजकल. थैंक यू जी बेटा जी. जादे क्या
1: अपना नाम लिखा था
0: देखा
1: मेरा

0: किया था, कमेंट वीडियो पोस्ट करती थी, उन्होंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था, सो देयर इज नथिंग पर्सनल, आप भी जाके देख सकते हैं। उन्होंने लिखा क्या
1: यूट्यूब चैनल देखो,
0: अच्छा आप सेलिब्रिटीज का नहीं देखते हो, क्योंकि सेलिब्रिटीज हैं,
1: नहीं
0: जस्ट इफ देर इज ऑफकोर्स मेरे को ऐसी वीडियो डाल रही
1: हूँ, कितनी स्ट्रैटेजी है कि समझने वाली बात, डॉक्टर सी निकल रहे थे,
0: डॉक्टर सहेल यूसुफ जिसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर साहिल खान के नाम से जानते हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद है, और वो जो है वो लाइट लेकर
1: रोशनी
0: अभी डॉक्टर साहब बताने
1: जिसका इंट्रोडक्शन मेरा दिया है
0: डॉक्टर साहब कहते
1: ठीक है, जिससे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया है,
0: इज्जत देखिए क्योंकि
1: देखिए इनको शेयर नहीं चाहिए, इनको लाइक नहीं चाहिए, इनको फॉलोवर सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, शी जस्ट वॉन्ट
0: मी, मैं भी जिस टॉपिक पे बात
1: कमेंट कर
0: होप

0: ايه الكريمه؟ मैं क्या होता है, मतलब आप क्या होता है, मतलब आप अजीब बातें करती हैं। आपको पता है कि आपके गले में
1: वो
0: ये क्या,

0: रहे, कपड़े नहीं संभाल रहे पाए मेरे जी। मैं आपको बता दूं, मैं आपके गटर नाले ठीक करवा दूंगा गली के, आप मुझे वोट करें। तो ये चीजें देखिए, ये रहेंगी, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको कॉल पे आना पड़ेगा।
1: देखिए आप मेरे हैं तो बुजुर्ग भाई,
0: अच्छा,
1: लेकिन आपको ये बता रही है ऐसे ना करें, आप मेरे लिसनर्स को उकसा रहे हैं।
0: मुन्नी
1: प्यारा नाम है, आप मेरे लिसनर्स को उकसा रहे हैं।
0: उकसा रहा हूं?
1: आप उकसा चुके हैं एक्चुअली,
0: आपने सामयिक तोड़ दिए।
1: नहीं मेरे लव्ज
0: आपने ये क्यों तोड़ा?
1: अच्छा आप ना
0: माइक लेगी, मेरा माइक लेगी सामने।
1: लिसनर्स को उकसा रहे हैं।
0: उकसा रहा हूँ?
1: आप उकसा चुके हैं एक्चुअली,
0: आपने सामयिक तोड़ दिए।
1: नहीं मेरे लव्ज
0: आपने ये क्यों तोड़ा?
1: अच्छा आप ना
0: माइक लेगी,

0: सवाल का जवाब बन जाऊंगा।
1: बने ना, बन क्यों नहीं रहे?
0: सामीन से मैं
1: मैं
0: कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता।
2: माइक तो दे,
1: नहीं पहले तोड़े ये चलेगा माइक का, तोड़ करे
0: देख ले सामीन।
1: आप क्या नहीं आते तोड़? आप बोले नहीं आते तोड़।
2: विद्यार्थियां है, विद्यार्थियां है,
1: राहत कॉल कर। तुम्हारी होनी चाहिए
2: राहत, इतनी दो

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत के इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और अफ्रीकी मुल्कों ने 2030 तक दो तरफा तिजारत का हजम 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया है। रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की मारूफ न्यूज कास्टर सुरैया शहाब की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के T20 एशिया क्रिकेट कप का फाइनल आज दुबई में श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत के इस्तेहकाम का अज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान और अफ्रीकी 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जामी और मौसर आलमी रद्दे अमल के नए अज़्म पर जोर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय एजेंसियों ने मुख्तलिफ मकामात पर छापों और लोगों को हिरासत करने की कार्रवाइयां की हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Freak Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाए तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान मुस्लिम नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत के इस्तेहकाम का अज़्म जाहिर किया है। पाकिस्तान और अफ्रीकी मुल्कों ने 2030 तक दो तरफा तिजारती हजम 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का इरादा किया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय एजेंसियों ने मुख्तलिफ मकामात पर शॉपों और लोगों को हिरासत करने की कार्रवाइयां की हैं। भारत में ब्रिक्स सरबरा इजलास के आगाज के साथ ही नाहिल मोदी हुकूमत की मौशी नाकामियां के खिलाफ कड़ी तनकीद में इजाफा हुआ है। खबरें तफसील।
1: This is FM
2: 101.1. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: And now you are tuned into

हाय और अब्बा ओए मैं मर जावा गुड़ खा के। इतने सारे भैणा भरा प्रोग्राम दे विच शामिल हो गए, तुहाडियां मोहब्बतां दा बहुत शुक्रिया। नाम लैना तुहाडे, लेकिन बाहर अगर वेखिए तो मौसम बड़ा बेईमान, बड़ा बेईमान है। ओ भाई इस मौसम तो बचण वास्ते की करो ना, पहले तो भज्जो ना, उठो ना, जरा घर दियां छत्तां वेखो किधरे, ये तो नहीं कि बंद होईयां ने, छापर ने, दरख्तों के पत्ते ने, नोवे के बारिश आवे तो फिर छत्तां चौण लग जा। दूजे वो लोग जो सफर से निकले ने उन्होंने वास्ते दुआ गुआ कि अल्लाह पाक उन्होंने खैर व खरीयत नाल मंजिले मकसूद ते पहुँचावे। जो लोग लाहौर आले पासे आ रहे हैं उन्होंने वास्ते दुआ गुआ कि अल्लाह पाक तुहानू दाता दी नगरी, दाता दी धरती ते खैर खरीयत नाल लियावे और तुहाडे मकसद और मिशन दे विच तुहानू कामयाब करे। जदों मौसम बदलता, मौसम बदलण दे नाल नाल बाज़ औकात इंसान भी बदल जाते हैं, तो तुसा नहीं बदलना इस वास्ते कि तुहाडे कंडू पिछे कोई बंदा तुहाडे बारे गल ना करे कि फलाना बदल गया, तो बार बार बदलना बंदे की कोई अच्छी सिफत नहीं होंदी। तो वैसे भी लगदे नूं छड़ जाना, बदल जाना, यह भी कोई चंगी गल नहीं होंदी। किसी का दिल त्रोड़ छड़ना ते उहदे दिल ते वो निशान छड़ जाना जिहड़े ओह कदी भी ना भुला सके, कम तुसा नहीं करना ते मैं ते बिल्कुल नहीं करना। इस तरह की फरमाइश की रजा चौधरी ने और आख्या इंज लगता है चन माइया नवे सज्जन बना लैनी, कोई ऐसी गल है? जे नहीं है तो बड़ी चंगी गल है, तो जे है तो जरा गौर करो।

वेलकम बैक, वेलकम बैक। टाइम हो गया है को 1:35। प्रोग्राम है रावी किनारे, आरजे गुलाम अली जावेद, थोड़ा अपना फैमिली चैनल FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर द स्टूडियो। थोड़ा मेरा साथ हों हर इतवार के दिहाड़े दोपहर 1 बजे तो लागे 3 बजे तक, जिद गलां कोई सकाफत दियाँ, कोई रिवायात दियाँ, कुछ तोड़िया ते कुछ साड़िया मेरे प्रोग्राम दे शामिल हो। एहसन खान बखर तो प्रोग्राम सुनते पे ने, प्रोग्राम नु सुनिया ने, पसंद किया ने, तारीफ की ने और आखने सजाद अली लाडला मेरे नाल हैं खफा ते उन्हां नू मना दियो। सजाद अली भाई मन जाओ ना, ना नाराज हो, चंगा नहीं होंदा इंज। अवैस काजमी साडा प्रोग्राम सुनते पे ने, सरगोधा तो प्रोग्राम नु सुनिया ने, पसंद किया ने, प्रोग्राम दे शामिल होए ने। नाल साडे प्रोग्राम दे विच शामिल ने साजदा लाहौर तो प्रोग्राम नूं सुणदियां पईआं ने, पसंद पईआं करदियां ने। न्याज ड्राइवर साडे प्रोग्राम दे विच शामिल ने, प्रोग्राम नूं पसंद पईआ करदे ने। न्याज भाई तुहाडा शुक्रिया, बड़ियां मेहरबानियां। डबल 471 ते मोहम्मद नवाज रायवेंट रोड लाहौर तो आखदे ने कि याद रखो तो पास हैं हम, याद रखो तो पास हैं हम और भूल जाओ तो फासले हैं बहुत। चलो भाई एवें हैं तो इंज कर लेने, सुनो फिर साढ़े नाल रवो और सानू दसो।

अच्छा सिंध के विच कुछ बंदे जिहड़े ना ओह जुगाड़ बड़े लाई वधे हुंदे ने, जुगाड़ किसे भी काम नूं आप कर लेना, ओहदी टैक्नीक दा ना पता होना, तुक्के ला लेने। जिवें असीं बचपन दे विच पेपर करदे आ सी ना, ते पेपर दे विच एवें ढकोसले मार चढ़ने, जो दिले चाही ओह गल कर छड्डी, ते पेपर कर आ, कदी कदी उहदे विच नंबर भी मिल जांदे आ। तुहानूं याद होणियां ने गल्लां, मैनूं वी याद हन, ते कदी कदी इंज हुंदा वी पढ़े वी जांदे आ सी, ओह चबलियां जिहड़ियां मारियां हुंदियां ने पेपर दे विच, ते फिर उस्ताद मजाक वी उड़ाउंदे हन। इसे तरह कुछ बंदे अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारे कम्मां दे जुगाड़ लाई वधे हुंदे ने, टैक्नीकल माइंडेड हुंदे ने, अपनियां चीज़ां आप बना लैंदे ने, आप कर लैंदे ने। वैसे वो बंदे बड़े स्वादी हुंदे ने, मैनूं अच्छे लगदे ने कि बहुत सारे पैसे जिहड़े ने ओह बचा लैंदे ने, और बहुत सारा वक्त जिहड़े ने ओह भी बचा लैंदे ने। मैनूं इस तों पता कि मैं अज किसे बंदे नाल सफ़र कीता, ते ओहदी कोई गड्डी दी गड़बड़ होई, ते ओह भाई एडा चलाक बंदा आप ही ओह अगां गया, ते उस बोनोट जिहा खोलिया, ते खोल के उस आप ही गड्डी ठीक कर ली। मैं ओहदा मूँह वेंदा रह गया वी इहदे तारे मैं हुंदा हुंदा पता नहीं मैं गड्डी दरीकणी आ, ते मोड़ 'च वर्कशॉप डूढ़नी आ, ते लै जावणा, ते मिस्त्री मैनूं कोई जो आखणा मैं ओहदी मन जावणी आ, ते चंगी मला जेब खाली करा के वापस आवणी आ। लेकिन इस बंदे ने अपना जुगाड़ लाया और गड्डी चला ली। बहरहाल कोई गल नहीं, बड़िया मेहरबानिया ने रूबीना जट्टी साढ़े प्रोग्राम दे विच शामिल होए ने, प्रोग्राम नूं पसंद पे करदे ने, आखदे ने 4471 ते भी मैसेज करने ने, लेकिन मैनूं कार्ड नहीं पे लभदा मैं

0: सुन रहे हैं FM 101।
1: You're listening to FM 101, a bale bale o shower shower.
2: सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का
3: बात करेंगे आपके वक्त की यानी तन्हाई के वक्त की, और हम इसे ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे आप सब से। आपने मुझे बताना है कि वो वक्त जो आप लोगों के साथ गुजारते हैं वो आपको ज़्यादा पसंद है, या वो वक्त जो आप तन्हा अपने साथ सिर्फ गुजार रहे हैं वो आपको ज़्यादा पसंद है। पाकिस्तान राइट नाउ आई हैव अ टाइम चेक, नॉट अ टाइम चेक ब्रेक, आई हैव अ न्यूज़ ब्रेक। लेट्स हियर दैट आउट, आई विल बी बैक आफ्टर रेड पाकिस्तान।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब, बिस्मिल्लाह करां, बिस्मिल्लाह करां।
0: कौन बोल दे पैने मेरे सोने भरा मेरे नाल?
1: अब्दुल सत्तार मुल्तान आला लाहौरों।
0: अब्दुल सत्तार मुल्तान आला लाहौर आए बैठे, की हाल है सर जी? ठीक ठाक हो?
1: वजात भाई नू सलाम मेरा ठोको खां।
0: सलाम दे दिता जनाब, वजात साहब बाहर गए ने ते आंदे ने सलाम कह देना।
1: गुलाम अली जवेद भाई और के हाल है ताड़ा?
0: मैं ठीक ठाक हाँ।
1: सावे घा माया
0: हाँ,
1: पूड़े वे मूँच मिट्टी ते सुवा माया।
0: चलो और सर ठीक हो, खरिया ते केड़े केड़े फन हैं तोड़े कोल?
1: सोनिया भला तुसा टाप के रखे खाना पकाम?
0: नहीं नहीं नहीं, केड़े केड़े फन हैं तोड़े को, केड़े केड़े काम कर लेंगे हो तुसी?
1: मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ मजदूरी कर लेना।
0: ओके हो गया, ओके ये सारे नाल चंगा हो गया जी। तुम बड़े लोग सलाम कह
1: आप के रखे खाना पका?
0: नहीं नहीं नहीं, केड़े केड़े फन ने तोड़े को, केड़े केड़े काम कर लेंगे हो तुसी?
1: मैं कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ मजदूरी कर लेना।
0: ओके।

इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनिशिएटिव और फिर इस प्रोग्राम के हर दिसंबर 2025 में इस आइडिया पर काम शुरू हुआ और दिसंबर 2025 से आज दिन तक जिस शख्स ने इस प्रोग्राम को कामयाब करवाने में वो विजन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का था, फिर हमारे विफाकी वज़ीर इत्तला तो नशरियात ने जिस तरह उन पर एतमाद का इजहार किया, ये भी आपके हर दिल अजीज़ हैं, आपकी भरपूर तालियों में जनाब असद अबरार साहब। असद अबरार साहब डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं विफाकी वज़ीर इत्तला तो नशरियात के, यहाँ पे जो एक गैप था सर कम्युनिकेशन का, उसको ब्रिज करने में भी असद अबरार साहब ने भरपूर किरदार अदा, विफाकी वज़ीर इत्तला तो नशरियात के, यहाँ पे जो एक गैप था सर कम्युनिकेशन का, उसको ब्रिज

की नुमाइंदगी करते हुए शील्ड पेश करें, जिसने इस प्रोग्राम के लिए हमें जब भी रहनुमाई की ज़रूरत हुई रहनुमाई फ्राहम की, और रहनुमाई से बढ़कर जहां फंड्स दरकार हुए तो उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया, उन फंड्स को अप्रूव किया। इस हॉल से लेकर इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हमें जो जो वसाइल दरकार थे जनाब सईद अहमद शेख साहब ने भरपूर अंदाज में हमें दिए, वो अपनी शील्ड वसूल करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात से। अगर आप मुझे इजाज़त दें पाकिस्तान की हालिया तारीख पर एक नज़र दौड़ाने की, तो मार्का हक से हम शुरू करते हैं। मार्का हक में इंडिया को जो चुबा वो शख्स, फिर उसके बाद इस्लामाबाद टॉक्स, फिर पाकिस्तान का बयानिया आलमी सतह पर जिस तरह उन्होंने पेश किया, और फिर इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें अपनी रहनुमाई दी, अपना वक्त दिया। हम सब के हर दिल अजीज़ वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारक। और अब सर हम स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स देंगे जी। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपने पहले पार्टिसिपेंट को दावत दूं, मैं बताता चलूं कि यहाँ पर हमने सर तमाम तबकात की कोशिश की है कि नुमाइंदगी हो। एक स्पेशल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही प्यारा बेटा हमारा मोहम्मद हम्माद, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। मोहम्मद हम्माद ने सर कोई सेशन जो है वो मिस नहीं किया, और तमाम चीज़ें जो बाकी दोस्तों ने की भरपूर अंदाज में इन्होंने उनमें हिस्सा लिया। भरपूर तालियां जी अपने इस दोस्त के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से राहील अशरफ, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी से हमना सिद्दीकी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से अरीज फातमा, दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से अहमद बिलाल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैमूना चीमा, पंजाब यूनिवर्सिटी से लाइबा शाहजहां, एफसी कॉलेज से अब्दुल रहमान नासिर, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से मरीहा बतूल, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी से मीरब फैसल। तालियां तो भाई बजाएं। गवर्नमेंट कॉलेज से मोहम्मद इस्लाम, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से हमजा अहमद रजा, इस्लामिया कॉलेज फॉर विमेन कूपर रोड से लाइबा आसिफ, इस्लामिया कॉलेज फॉर विमेन कूपर रोड से ईमान जहरा। सर यहां आप देख सकते हैं कि आपके विजन के मुताबिक फीमेल्स की तादाद आपको ज्यादा नजर आएगी। नयान अली अब्बासी पंजाब यूनिवर्सिटी, अहमद भट्ट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर, अब्दुल रहमान नासिर, हो गया पहले मैं हसीबुर रहमान आइए जी, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी। बाकी दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखिए। इसके बाद डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सईद अहमद शेख आपको सर्टिफिकेट्स पेश करेंगे। बस

0: हाँ जा रहे हो, निकल जाओ निकल जाओ। अदील के पास रहें दूसरा टीम। हैं अभी हैं 5-10 मिनट का और। हाँ हाँ बुला लें बुला लें। बस पाँच देने लगे बेटा। हाँ नहीं नहीं बस सर्टिफिकेट ले लें बस। अब अदील जाती है सर्टिफिकेट मंगवा लो।
1: सर मेरा फोन इतने पे है, मैं उठाने
0: मेरी गुड़िया। एक मिनट बस, अभी इधर ऊपर तस्वीर हो जाएगी। सॉरी माजरत, ले आओ दी। आप लोगों को जो इंतज़ार की जहमत गुवारा करनी पड़ी उसका अल्लाह पाक ने फल भी दिया है। इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की सैर आप फरमाएंगे अब, और बहुत सी कमेटियों का हिस्सा बनेंगे। तो जो आज जिन बच्चों को गुस्सा मुझ पर चढ़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, तो अभी भी चढ़ा, मुझे पता है, मुझे पता है। असद बिस्मिल है, वो की शेर है जी वो, असद बिस्मिल है इस अंदाज का, कातिल से कहता है तू मशके नाज कर, खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। जितनी भी नाराज़गियाँ हैं, जितने भी गिले शिकवे हैं, उनके लिए मेरा सर आपके सामने माजरत से झुका हुआ है। तो बस अब थोड़ा सा टाइम बस और। सर्टिफिकेट ये आ गया, ये देखिए सबके।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद
2: और अयास असलम।
1: पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम पर पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए एक खसूसी इमदादी स्कीम का इजरा किया है।
1: शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब पर हौसियों के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की है।
2: सऊदी वलीअहद ने सऊदी अरब की गैर मुतजल्जल हिमायत और खत्ते में अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की है।
1: वज़ीर-ए-आज़म के यूथ प्रोग्राम और यूएन वेमेन पाकिस्तान ने पाकिस्तान में खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं।
2: पाकिस्तान और चीन ने बिलखसूस मस्नूई जहानत और डिजिटल बुनियादी ढांचे के शोबे में कारोबारी इदारों के दरमियान तआवुन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया है।
1: पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक से पहले हिफाजती मुहिम को तेज कर दिया है।
2: गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने मुतालिका हुकाम को गिलगित में नलतर फेज 3 पन बिजली मंसूबे की जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की है।
1: आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तरक्की के नए दौर के आगाज के लिए 100 रोजा इस्लाहाती मंसूबा तैयार किया है।
2: के लिए ज़ालिमाना कानून इस्तेमाल करने पर बीजेपी की भारतीय हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है।
1: रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज़कास्टर सुरैया शहाब की आज 7वीं बरसी मनाई गई।
2: दो रोजा डाची आर्ट्स और क्राफ्ट माइस कराची में खत्म हो गई।
1: और पाकिस्तान के किक बॉक्सर्स ने कोलंबो में किक बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों में भारत और श्रीलंका के हरीफों को शिकस्त देकर 2 टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

जनाब आज कोई लंबा टौड़ा तारफ मैं अपना क्या करवाऊं, टाइम बड़ा थोड़ा है बातें करने का, तो मैंने ये समझा कि डायरेक्ट बातों पे आए। सो जनाब मुझे कहते हैं वजाहत नवाज, मेरा ताल्लुक है शहर इकबाल से। आज एक सबब से यहाँ पे लाहौर आने का मौका मिला, तो बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़ा मान रखा जनाब मैनेजमेंट ऑफ द रेडियो पाकिस्तान लाहौर। आई एम थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे लाहौर में प्रोग्राम करने का मौका दिया। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि यार कभी बड़े शहर में बड़े लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम करूं, लेकिन हिम्मत करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है। यू हैव टू डू समथिंग यार, कुछ अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। क्या ख्याल है? सो जनाब लाहौर का नंबर आप लोगों को याद है। इसके जरिए आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, एंड दैट इज 042-111-0101 इज द राइट नंबर। आपकी मुझसे बात हो सकती है, एक नया ताल्लुक, एक नई आवाज आप लोगों के लिए, नई पहचान, नया चेहरा, नया शख्स, नई सड़कें, नई रौनक, नई फजा, नई हवा। अरे क्या कहने हैं लाहौर के। लाहौर में आके, लाहौर में बैठ के प्रोग्राम करते करते मैं एक बात ये कहूंगा कि लाहौर लाहौर है यार, लिटरली

परसों जनाब बीजीएम मंगवाया है सियालकोट से, मंगवाते मंगवाते तकरीबन 10-15 मिनट लग गए। तो मैं चाह रहा था कि यार अपने बीजीएम के साथ ही प्रोग्राम करूं, क्योंकि यू नो एक रिदम बना होता है, बात करने का अंदाज होता है। तो मेरे पास गाने जो हैं वो सियालकोट वाले नहीं हैं जो मैं चलाता हूँ, कुछ म्यूजिक यहाँ का है, आई डोंट नो। और आज मैंने प्रोग्राम का जो नाम रखा है वो है दिल से लाहौर। अच्छा है ना, आप भी बहुत अच्छे हैं। सियालकोट में सुना जा रहा हूं मैं, थैंक यू वेरी मच। मेरे कुलीग सुन रहे हैं, मेरे दोस्त सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। अच्छा आज मैं ना एक बड़ा अहम आपको मैसेज देके जाऊंगा, बड़ा ही अहम मैसेज। अगर आप इसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके काम शुरू रहेगा, आई एम श्योर यू, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। सो राइट नाउ एक खूबसूरत सा ट्रैक, मन मस्तलम जी, मलंग जी, OST है जी। Stay tuned and stick around. This is Studio Pakistan FM 101 Lahore. मुझे कहते हैं वजाहत नवाज।

0: होटल किरण बात कर रही हूँ, आज मेरी बर्थडे है तो आप विश करना ओम शांति।
1: जी जरूर किरण, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो।
0: जी आप विश करेंगे?
1: बिल्कुल विश करूंगा, मैं बिल्कुल विश करूंगा। थैंक यू वेरी मच,
0: शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। जी आज किरण की है बर्थडे। अच्छा वैसे मैंने इनको बर्थडे ना विश किया तो है, लेकिन ये कह रही है कि बर्थडे विश करेंगे तो वो मुझे लगता है गाना जा रहे हैं साथ। अच्छा मैं वैसे ही कह देता हूँ हैप्पी

बात, बहुत शुक्रिया, खुश रहे हम आदरे। हम आप कह रहे हैं कौन सी बात है भाई बता दें, ऐसी थोड़ी ना इतनी जल्दी बता दो यार, काम की बात जो होती है ना उसके पैसे लगते हैं। अच्छा काम की बात भी अगर आप जल्दी बता देना बगैर किसी मुआवजे के बता दें तो फिर उसका उसकी वैल्यू नहीं रहती उतनी, है ना, ऐसा है कि नहीं है? What do you guys think?

slog Jesus, tänker jag. हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निमटा लें। हमारे कुछ मसाइल हैं, ये ज़रा निमट जाएं, हमारे मसाइल हल हो जाएं, थोड़ा सा फ्री हो लें तो फिर ये काम करेंगे। तो एक बात याद रखिए, आप सारी ज़िंदगी फ्री नहीं होने वाले। आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें, वो जो आप करना चाहते हैं वो कर सकें। कुछ भी हो सकता है यार, आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, कहीं जाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं आप, कुछ पढ़ना चाहते हैं आप। यू हैव टू डू विद योर रूटीन वर्क। अपने कामों के साथ साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा तो फिर ही आपका वो काम होगा, ये बात याद रखिएगा, वरना वो काम कभी नहीं हो सकता। वो काम आपका पेंडिंग ही रहेगा और आपकी ख्वाहिश की कभी तकमील नहीं होगी। आपकी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी बस, और इसके सिवा कुछ नहीं। और फिर जब कभी आपसे पूछा जाएगा भाई क्या खोया क्या पाया, आप कहेंगे यार एक बड़ी ख्वाहिश थी वो रहेगी, उसमें ये आप कुछ चीज़ें जो आपने नहीं की। और फिर आप कहेंगे कि यार जिंदगी ने मौका नहीं दिया। एक बार याद रखें, ये सरासर नाइंसाफी है, ये गलत बयानियां हैं कि आप कहें कि जिंदगी ने मौका नहीं दिया। कुछ मौके बनाना पड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।

सो माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके इरादे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ टाइम निकालें उसको पूरा करने का। मैं भी हर काम नहीं करता, लेकिन ये है कि ये एक बड़ी ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा यार यही मौका है, आज गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। जस्ट डू इट, गो।

मैसेजेस आ रहे हैं। मुस्लिम हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं, सरवर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। लाहौर वालों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सो थैंकफुल गाइस। 4 मिनट बाकी हैं, निगरान साहब भी मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। टाइम इज गोइंग टू बी ऑन एंड, खत्म होने वाला है टाइम आपके साथ, बस इतना सा ही है, 9 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। सो जनाब, 9 बजे तक एक खूबसूरत ट्रैक, कुछ मैसेजेस रीड कर लेना। यस, ये वाला प्ले करते हैं, एक मिनट बाद वापस आऊंगा, देन कुछ बातें करेंगे और आपसे इजाजत तलब करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

मुझे अपने मेज़बान मुजाहद नवाज को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ऐसे कराऊँ अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी वो लौटाने आया।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
4: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रहे हम भाग नहीं सकते। उफ क्या मेरी जान, शादी से कॉम्प्रोमाइज।
5: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
6: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए। साड़ी पहन
7: पहन नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। आई कांट डू दिस एनीमोर, मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
8: वापस घर बुला ले प्लीज।
4: बार बार एक ही।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम पर पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए एक खुसूसी इमदादी स्कीम का इजरा किया है। सऊदी वलीअहद ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मोक से पहले हिफाजती मुहिम को तेज कर दिया है। पाकिस्तान के किक बॉक्सर्स ने कोलंबो में किक बॉक्सिंग के आलमी मुकाबलों में भारत और श्रीलंका के हरीफों को शिकस्त देकर दो टाइटल्स अपने नाम कर लिए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Upcoming is one home with Yusuf all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multani, Nagpura, Pakistan, and Pakistan se bahir puri duniya mein. Radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ. ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शबगम. बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम में एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ प्रोग्राम शबगम में. काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है, सो होप्सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जहां कहीं भी होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे. 13 सितंबर साल 2026 और इतवार की खूबसूरत शब आप लोगों के साथ बिताने के लिए मौजूद हैं.

सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारी जान, सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, ख्वाहिशात हैं, जो जान रहे खुश रहे। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। आज हम कोई ऐसे टॉपिक नहीं रखेंगे, आप अपनी पसंद का कोई भी शेर जो टू लाइंस का होता है ना, एक तो लोगों को बताना भी पड़ता है, नहीं तो वो बब्बर शेर जो है वो भेज दे इसे। अपनी पसंद का कोई भी शेर आप हमें लिख के भेज सकते हैं, हम उसको शामिल करेंगे और कॉल्स के जरिए भी आप हमें सुनाएंगे गजलें नहीं शेर। 4471 पे आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस, वहां पे भी आप पोएट्री लिख के भेज सकते हैं और facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे। एंड जस्ट इन केस यू फॉरगॉट, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ।

जी, आप लोगों के पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे कॉल्स के जरिए जो हम शामिल करेंगे 10:30 की ब्रेक के बाद। मीनवाइल आप लोगों के टेक्स्ट मैसेजेस 4471 पे और अस्सलामुअलैकुम यूसुफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। एक वीक बाद आपकी आवाज़ सुनी है, आवाज़ अभी भी थोड़ी सी

आज तो प्रोड्यूसर साहब भी बैठे हैं सामने और सुन रहे हैं आप। एक दो दो स्क्रीन है और उसके बाद अच्छा ये सॉन्ग आपको नासिर साहब डेडिकेट कर रहे हैं। और जितनी अच्छी अभी आपने चाय पिलवाई है ना, अब तो मीठी चाय और मीठे लोगों से जो है वो दूर दूर रहने का दिल करता है।

कि मेरा एक चेहरा है और मुझे हर सुबह से धोने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। खुदा उन लोगों की मदद करे जिनके बहुत सारे चेहरे हैं। वहां पे तो कोई महंगा वाला फेस वॉश भी जो है वो असर नहीं करेगा। तो उसने जी मैंगो मैन साहब कैसे हैं और होप कि वो भी ठीक होंगे। अब ये ना पूछेगा मैंगो मैन कौन है। जब हैं तो फिर

अपने दौर का एक शाहकार सॉन्ग और उसको शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद और आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे 0511111001।

के स्टार्ट में कुछ पर्शियन लाइन थी, तो मुझे एक फारसी का शेर भी याद आ गया कि गाफिल दादियम दिल बेदस्तत मारा याद उतूरा फरामोश। रात को मैंने सुनाया भी था गजनफर ने जब कॉल की थी उस वक्त, और बहुत कम हुआ है कि मैं कभी किसी लाइव शो में इस तरह मैंने कभी पार्टिसिपेट किया, तो उनकी मैंने कहा चलिए अच्छे अच्छे लोग भी सुन रहे हैं तो हम भी सुन लेते हैं, हम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। कि गाफिल दे दिया दिल हमने अपना तुम्हारे हाथों में, हमें याद रहा और तुम भूल गए।

0: इश्क मोहब्बत अपनापन वैसे आप लोगों की लाइव कॉल्स को शामिल करते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कौन कहां से हैं। फर्स्ट आप अपनी पसंद को कोई भी एक शेर सुना सकते हैं, बाकी सलाम दुआ सबको इकट्ठी देंगे जी, बाकी समझदार आप खुद हैं। और जस्ट हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही पार्टिसिपेशन को शामिल करेंगे, रिश्तेदारियां हम बाद में पाल लेंगे। देखते हैं कौन कहां से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एड्डा टाइम नहीं होता साढ़े को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम की छप्पड़ फाड़ के बाहर निकलना से तुसी।
1: ये तो भाई ट्रेड अवार्ड बोलना था, बड़ी मेहरबानी जी। तो नहीं पहले लिस्ट सलाम करने हैं तो सा सलाम तो सलूट आने ही तुसी बिल्कुल छा जाने हो।
0: बस
1: मैं जाना बहुत ही सुपर शो है।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई अपनी पसंद का शेर सुना दे एक।
1: बहुत ही सुपर शो है मेरे भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे। मैं कहना जितनी तारीफ की थी बल्कि जितनी कामे थे, मैं बड़ा खुश नसीब संपर्क जरिए चुकन गल होनी पी है, क्योंकि मेडिकल पता नहीं की चक्कर, पता नहीं मैं अब बड़े तवील अरसे तो बाद चुकन गल होनी पी, कॉल मिल रही है या कॉल मिला मिला के
0: मिल रही है, असी चाहने नहीं है ना।
1: मैं ये कहता कि मौसम ने हवाले नाल के ऐ मौसम तू इतना हसीन और जमील और खूबसूरत भी ना हुआ कर, हर एक के पास अपना महबूब नहीं होता।
0: وي ولا حبيبي هذا معجزات الفلتر كله فلتر
1: مجھے یہ بتائیں کہ کیا نہیں بھائی کدھر گیا گیا اپنے گھر گیا گیا کشمیر میں
0: یا رات کو تو شو کیا پورا شو آپ نے سنا ہے کہاں سے کشمیر چلے گئے
1: میں نے آج رابطہ کیا تھا نا کہ میں موٹر وے پر جا رہا ہوں میرا چلان ہو جائے گا پتہ نہیں گاڑی کی آواز آ رہی تھی پتہ نہیں کدھر جا رہے تھے
0: وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور فاطمہ اے جے کے سے ہیں جی، ممکن ہے کچھ پہلو مثبت نکلے، تم زاویہ بدل کے دیکھو مجھ کو۔ سدرہ مرشد موجود ہیں اور کہتی ہیں کہ برف کی چادر میں لپٹی ہوئی یہ تصویر کچھ کہتی ہے، خاموش آنکھوں میں ایک پوری داستان رہتی ہے۔ دکھی شاعری بھی تھی سنانی مینو، میں تھوڑے تو زیادہ دکھی ہوں۔

051-111-0101 और 9202-540 अगर वो नहीं मिलता तो, क्योंकि रात को मैं भी काफी देर मिला था, मैं सोच रहा था कि लिसनर बेचारे क्यों फिर इतराज करते होंगे कि ये नंबर नहीं मिलता। तो आज पता चला मौनी साहब लगे होते हैं फोन पे। ठीक है, तो ही मैं कह रहा बेल लेना क्यों अंदर। सो जी, एक और नंबर भी आप जो है वो डायल कर सकते हैं 051-90-11-03। ये आप लोगों की सहूलत के लिए है। फर्स्ट आपने नंबर वही मिलाना है 051-111-0101 या फिर 051-920-11-03।

0: शहजादी मंजूरा लिखती हैं कि फ़र्क समझिए ज़रा, फ़र्क समझिए ज़रा, आप महंगे हैं और हम कीमती। वाह, आप महंगे हैं और हम कीमती। सो आप लोगों की मज़ीद पार्टिसिपेशन, अपनी पसंद का कोई भी शेर आप हमें सुना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पार्टिसिपेशन आप लोगों के साथ साथ शामिल करूंगा 0511111001। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टूट टूट, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप?
1: तो भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी,
0: शुक्र अल्लाह का। तारुफ करवा दें, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अड्डा पुराना तो मैं भी नहीं हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है?
1: ये ठीक ठाक है सर, अल्लाह का करम, आपकी दुआओं से आपका शो सुनते हैं तो आ जाता है। ड्यूटी फिनिश करके आए थे, खत्म करके आए थे, ऑफ करके आए थे, मैंने कहा चलो यूसुफ भाई ऑन होंगे, हम भी ऑन हो जाते हैं।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का कोई भी शेर आप सुना सकते हैं।
1: ये तो बहुत है आपकी नजर, मुझे फसल कहा कि मौसम सुहाना दे, मुझे मुझे फुर्सत कहा कि मौसम सुहाना देखूं, यूसुफ से याद से निकलूं तो जमाना देखूं।
0: वल्ला हबीबी।
1: तो अभी जो छोड़ जाते हैं ना यूसुफ भाई, उनके लिए शेर है, जिंदगी से चले जाते हैं तो मतलब ये कि भूला नहीं हूँ।
0: ठीक है ना, कोई बात नहीं,
1: मतलब ये कि भूला नहीं हूँ मैं, ये भी नहीं कि याद आते।
0: अच्छा,
1: पहले सबसे पहले तुम, पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते
0: हो, अब तुम सबके
1: बाद आते हो, ये उन लोगों के लिए।
0: चले सही हो गया, ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का। 0511111001। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? सिद्रा कुरैशी मंदरा से। कैसी हैं आप? ठीक हैं
2: भैया? बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक
0: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी खांसी, अगर ऑन एयर आ भी गई तो मैं पहले ही माजरा चाहूंगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा
2: हूँ। मैं ऑन एयर?
0: जी जी ऑन एयर है, और की मतलब मोबाइल से फोन किया तुसी।
2: और सुनाए भैया? ठीक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपनी पसंद का कोई भी शेर आप सुना सकती हैं मुझे।
2: शेर मोबाइल मेरा नीचे पड़ा हुआ है मोबाइल में।
0: अच्छा चले, कोई बात नहीं, खैर।
2: फेवरेट सुनाती हूँ।
0: दो लाइंस का कोई भी सुना दें।
2: लेकिन भाई पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करें।
0: नहीं जी, अल्लाह माफ करे थे, मैं गाना तो मैं चलाऊंगा नहीं। गाना मैंने आज बहुत सारी, मेरे तकरीबन पता कितने बजे आया हूँ स्टूडियो में, मैं तकरीबन 7:30 पे मैं स्टूडियो में आ गया था, और मैं उस वक्त से आप लोगों के लिए इतने अच्छे मैंने सॉन्ग्स आज चुन चुन के निकाले।
2: भैया
0: मेरी
2: बात सुने, मैं सॉन्ग की नहीं रिक्वेस्ट कर ली।
0: आपको सुनाऊंगा?
2: हाँ अगली बार जब शो करने आएंगे।
0: अच्छा चले, मैं प्रॉमिस नहीं करता, कोशिश करेंगे। ठीक है
2: चले, मैं आपको शेर सुनाती हूँ।
0: सुनाए जी।
2: बेशक इस्लामिक हो जाए, मसला नहीं है।
0: सुना दें जी, सुना दें। अब कैटेगरीज तो हमने डिफाइन नहीं की इसमें।
2: मुनाफिकों से जो मैंने पूछा, मुनाफिकों से जो मैंने पूछा कि क्यों तुम नहीं जिक्र अली करते, मुनाफिकों से जो मैंने पूछा कि क्यों नहीं तुम जिक्र अली करते, वो बोले अपनी जुबान पे छाले अजल के दिन से पड़े हुए।
0: माशाल्लाह जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: हाँ भैया कैसे, और आप ठीक हैं? आप यूसुफ भाई बात कर रहे हैं?
0: नहीं जी, अब्दुल कुदूस चुगताई बात कर रहा हूँ।
2: वो ना दरअसल मेरे हैंड फ्री खराब हो गए, इसलिए मैं नहीं सुन पाया अभी ना।
0: अच्छा चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है
2: हाँ भाई, इश्ताक अंकल को सुनाओ।
0: وعلیکم السلام جی, سب کی طرف سے وعلیکم السلام. اور دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا, اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد, اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا دل برباد, اس کا غم ہے کہ بہت دیر میں برباد کیا.

0: सबब पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा
1: दिल के लुटने का, सबब पूछो ना सबके सामने।
0: आए ये कहानी सही,
1: दिल के लुटने का सबब
0: हमको किसके गम ने मारा,
1: पूछो ना सबके सामने।
0: दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने।
1: आज बिल्कुल गला जो है वो साथ नहीं दे रहे, नहीं तो मैं आपको वो बताता।
0: ये कहानी
1: चलिए, ये कहानी फिर से।

दस बजकर 45 मिनट हुआ से आते हैं और आपका मेरा सांस रेगस्ट्रेगाम में ठीक रात के 12 बजे तक। जिन लोगों ने अभी हमें सुनना शुरू किया है, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया उनको बताते चलते हैं। पहले तो उनको वेलकम करेंगे, उसके बाद आप अपने पसंद का कोई भी शेर हमें कमेंट्स के जरिए भी भेज सकते हैं, एसएमएस के जरिए भी भेज सकते हैं, और जब कॉल्स का कहा जाए तो आप कॉल्स के जरिए भी हमें सुना सकते हैं।

मतलब हम लोगों ने ना इस फैंटेसी को, इस स्पेशली जो फेसबुक है ना, इसको पता नहीं हमने क्या बला समझ लिया। पता नहीं कौन सी चीज हमने इसको समझ लिया है कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हो ना, मतलब मैं तो पोस्ट लगाता ही नहीं ना, मैं पिक्चर्स लगाता हूँ, मुझे कोई इतना ज्यादा इस चीज का शौक ही नहीं है। लेकिन लोगों को ना इस चीज का बड़ा ही कोई अजीब किस्म का क्रेज होता है जी, पिक्चर भी लगानी है, उस पर लाइक्स भी आए, कमेंट्स भी आए,

0: इवन कि आप अपनी भी अगर वॉल चेक करें तो उसमें देखें कि जब भी आपने कोई बड़ी सीरियस किस्म की बात लिखी होगी उस पर कोई कमेंट, उस पर कोई ऐसी कोई रिस्पांस नहीं होगा, लेकिन पिक्चर्स लगाएं आप, उसके बाद स्टेटस ऐसे लगाएं और उस पर फिर देखें और कोई पता नहीं कोई बंदा कहाँ है, कौन कहाँ है, लेकिन फिर भी आपको उस फैंटेसी का इतना कोई क्रेज है इसका।
1: दिल के लुटने का सबब

कि जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो याद करने दो। जो दिल मांगा तो बोले कि ठहरो याद करने दो, जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने कहाँ रख दी।

लॉरी पर तुम्हारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, थैंक यू सो मच जी। और मैं ड्राइव करते हुए आपको सुन रही हूँ। आपकी प्लेलिस्ट बहुत ही फंटास्टिक किस्म की है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी टेक्स्ट मैसेज का।

शाजिया फ्रॉम बहावलपुर और काफी टाइम के बाद आपका शो सुन रही हूँ। आई एम योर साइलेंट लिसनर और समझम आपको मैसेज भी कर देते हैं और मैं और मेरी फैमिली जो है वो आपको सुन रही है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का भी।

0: कर लिया। एक शॉर्ट ब्रेक है, न्यूज हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, आप लोगों की पार्टिसिपेशन शामिल करेंगे facebook.com/fm101channel पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे, आप कमेंट्स कर सकते हैं और जिन लोगों ने अभी स्पेशली सुनना शुरू किया उनको भी वेलकम करेंगे यहाँ पे। और ड्राइव करते हुए अगर आप सुन रहे हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, गाड़ी बहुत ही एहतियात से चलानी है।
1: जन्नत से कम नहीं।
0: टॉपिक है कि अगर आप अपनी पसंद का कोई भी हमें दो लाइंस का जो शेयर होता है ना वो भेजना है, अपनी पसंद का कोई भी अच्छा सा। 051111001019201103

0: चीज़ को मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा।
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम पर पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए एक खुसूसी इमदादी स्कीम का इजरा किया है। सऊदी वलीअहद ने सऊदी अरब की गैर मुतजलजल हिमायत और खित्ते में अमन के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ की है। पाकिस्तान और चीन ने बिलखसूस मसनूई जहानत और डिजिटल बुनियादी ढांचे के शोबों में कारोबारी इदारों के दरमियान ताबुन बढ़ाने के आज़म का इरादा किया है।
1: This is FM 101.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

जी वेलकम करते हैं आपको, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। 11:03 हुआ साथ हैं आपका, मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियली पेज पे आप लोगों के कमेंट्स शामिल किए देते हैं जी। मोहम्मद हफीज रहमान बकर से हमारे साथ मौजूद हैं, ईदगाह जनूबी बकर से मोहम्मद हफीज रहमान, हबीब मलिक खलील मलिक अली रहमान मुल्तान से, गुल यासीन नाज वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। की शरारत कहती है प्ले लिस्ट से कमाल आपकी आरजे कीप रॉकिंग, नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रेहाना खान बखर हमारे साथ मौजूद हैं जी बखर से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आईडी पे भी वही है तो तेरा टेक्स्ट भी वही लिखे, थैंक यू सो मच जी। रोजी शेख कहती हैं शो नाइस, आज का टॉपिक बताएं टॉपिक। अच्छा जी, साथ ही आपने कहा मुझे शेर व शायरी नहीं आती। हमारे साथ मौजूद हैं वो गुफ्तगू से गुरेजा, मैं चाहूँ बात पे बात, कभी कभी किसी महफिल की खूबसूरती सिर्फ अल्फाज में नहीं उस आवाज़ में होती है जो दिल को ठहरा दे, बेहतरीन शो, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हमें गला नहीं कुछ नहीं है, बड़े हो जाओ सर। सायरा हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? आज काफ़ी दिन बाद शो सुना आपका, आपका अच्छा जी, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। महर लजपाल है मुल्तान से, अदन फातमा, थैंक यू सो मच। हसनैन दाऊद, अस्सलाम वालेकुम भाई, हसनैन दाऊद फ्रॉम मरी, बेस्ट विशेज फॉर यू भाई, थैंक यू सो मच। जिंदगी एक अजीब पहेली है, कोई बचता है रिश्तों में चोट खाने से, कोई खून के रिश्तों की खातिर चोट खाता है। अच्छा जी, मैंने कहा म्यूजिक खत्म होना है, मुझे उसको भी साथ से देख रहा था। नजीर खोसो है जी सोबतपुर बलोचिस्तान से, इजाज़ बुखारी नाइस प्रोग्राम, अमरीन दाना थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बख्त रमदानी जमानी बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, जाफर आबाद बलोचिस्तान से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट आंदे ने

ओके जी, हमने टॉपिक यही रखा है कि अपनी पसंद का कोई भी आप हमें शेर लिख के भेज सकते हैं, उसको हम शामिल करेंगे। कॉल्स भी आप लोगों के साथ साथ शामिल करेंगे 0511100101 और 9201103। लेकिन है नंबर में कॉल के लिए आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी आसानी हो जाए।

0: ऐसी खांसी लगी है ना मुझे कि मैं जब ऑफ द माइक मुझे अचानक जाना पड़ता है ना, मेरा जो ब्रेन है ना, जो मेरा दिमाग है, वो भी अंदर से ना दर्द करने शुरू हो गया। मुझे अपने दोनों हाथ पर सिर पर रखने पड़ते हैं, फिर मुझे खांसी करनी पड़ती है। सर जी, आप लोगों के पार्टिसिपेशन को शामिल करते हैं मजीद। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर टू टू। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? कैसे हैं? सायरा बात करें, बेरिन प्लेस से।
0: कैसी हैं आप सायरा? ठीक हैं?
1: ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी।
1: तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और क्रिएटिविटी क्या जबरदस्त आपने सेलेक्ट की है।
0: अच्छा सही, ठीक है। तो क्या सुनाना चाहेंगी अपनी पसंद का?
1: मुझको तलाश थी शबनम के गुलसिता की, लेकिन वो तपता हुआ सहरा दे गया। सहरा को कितना नाज है अपने वीरानगे पर, शायद इसे खबर नहीं मेरे उजड़े हुए दिल की।
0: वही वही वही वही, क्या बात है।
1: और कैसे भैया?
0: शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्लाह ताला का बहुत
1: अच्छे से जा रहे हैं।
0: थैंक यू,
1: जज़ाकअल्लाह, आपसे बात होगी।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी। और कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना आए हाय हाय हाय हाय, हम भी शायर हो गए और बड़े शदीद किस्म के शायर हो गए कि कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनाता। कोई तो बात है मोहब्बत।

Muhammad Ziaullah Khan from EMRE. Welcome to the show. Dear RJ Muhammad Yusuf, the great. मैं शुरू से ही आपका शो सुन रहा था. मुझे अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जो बेशक बहुत अच्छा सिद्रा ने जो है वो शेर पढ़ा था. और नाजनीन हमारे साथ हैं जी, और होते हैं चांद रात. अच्छा, मुझे पहले इसको पढ़ने दें.

होते हैं चांद रात के तो मुंतजिर सभी हम, तो बस तमन्ना है कि जहरा के चांद की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी दुआएं आपकी तरफ से।

ओके जी, वेलकम करते हैं और मज़ीद आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी शामिल करेंगे। ज़रा तबीयत कुछ मुझे लग रहा है कि बस ये टाइमिंग जो है वो मुकम्मल हो जाए,

आपको भी लगता है कि हम भी कोई AI हैं, या हम भी कोई ChatGPT हैं कि इंसान है? इंसान है, इंसान का मतलब पता है इंसान क्या होते हैं? अगर आप खुद को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं ना, हर इंसान को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ बुरा भी लगता है।

सर जो आपने ये न्यू सॉन्ग इससे पहले चलाया था बहुत ही अच्छा, किस सिंगर का है? ये मोहसिन अब्बास का।

अहमद शाह इस्लामाबाद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आफ्टर लॉन्ग टाइम। यूसुफ भाई आपको सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले अहमद, ठीक है जी। मेरे पुराने वाले जो हैं मोहल्लेदार, मोहल्लेदार अब तो

हमारे साथ मौजूद हैं जी, और जी जी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, लेकिन एथिकली जो है इस माइक की जो है वो बहुत वर्थ है। और जब उन्होंने शोज शुरू किए थे ना, मैं उससे भी ऑलमोस्ट 11 साल पहले जो है वो इस रेडियो को ज्वाइन कर चुका था। तो जिन लोगों से हमने ब्रॉडकास्टिंग सीखी है, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, समझाई हैं। सो लाजमी नहीं है कि हर चीज़ जो है हम ऑनरली इसको ऐसे ही डायरेक्टली शेयर कर दें। साढ़े घर बाबा जी का रेडियो है। तो जो चीज़ें लाइव जाने वाली होती हैं उनको हम शामिल करते हैं। वैसे बीप जो है वो मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि कुछ एथिकली अच्छी नहीं होती है। राजा तारिक फ्रॉम मुजफ्फराबाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हमें दुनिया नजर आने में बहुत देर लगी। नजर आता है जो वैसा नहीं होता कोई शख्स, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। ग्यारह बजकर 25 मिनट हुआ, चाहते हैं जी कितनी देर लगी आपको समझाते हुए।

फातिमा मुर्शिद मौजूद है और भाई मैं अपने उनको प्यार से AI कहती थी क्योंकि यूज कुछ करो बातों तो AI वाले क्वेश्चन करता था। अच्छा जी, हाँ ये जो फीमेल्स को ये भी इशू होते हैं ना कि सवाल ना किया जाए। ये सॉफ्टवेयर और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। मतलब फिजिकल बंदे ना जड़ा जड़ा जींदा जागदे उहदे नाल तुसीं कोई गलबात नहीं करनी। तुसीं पहले थोड़ी खप सी दुनिया इहदे विच, ए होर आ गई ना। इवन क्या बताया जाता है जी, इतना जो कमरा है उसका, उसकी इतनी स्पेस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसकी सफाई कितनी देर में हो सकती है। पहले हम किसी से मशवरा नहीं लेते थे, अब सारे मशवरे वहीं से लिए जाते हैं।

मैं बिलाल यासिफ शाम पाक आर्मी, रोज रोज का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर जालिम।

ओके जी, हम एक सॉन्ग शामिल करेंगे, उसके बाद हम स्पेशल सेगमेंट जो है वो ओल्डी गोल्डी नंबर्स उसकी तरफ आएंगे, और ये भी कुछ नए सॉन्ग्स हैं आप लोगों के लिए, होप्स हो कि आप इन्जॉय करेंगे। एंड जैसे कि यूसुफ़ हुआ था, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ़।

ओके जी, आपको वेलकम करते हैं और स्पेशल सेगमेंट ओल्डी गोल्डी नंबर्स के साथ। कि उसने आना भी नहीं है और हमने बुलाना भी नहीं, उसके बगैर हमने दिल किसी से लगाना भी नहीं। वो आजाद परिंदा है, डाल डाल उड़ता रहेगा, मैं हूं शजर जैसा, कहीं और जाना भी नहीं। उसे भुलाने की कोशिश कहीं कामयाब ना हो जाए, इसलिए हमने खुद को भी आजमाना भी नहीं। उसे भुलाने की कोशिश कहीं कामयाब ना हो जाए, इसलिए हमने खुद को कभी आजमाना भी नहीं। ये इश्क की जंग भी क्या अजीब जंग है, उसे जीतना भी है और उसे हराना भी नहीं।

हम अगर सच के उन्हें किससे सुनाने लग जाएं, लोग तो फिर हमें महफिल से उठाने लग जाएं। याद भी नहीं आज तक ठीक तरह से जो शख्स हम उसे भूलना चाहें तो जमा रोशनी हो तो उन्हें लोग बुझाने लग जाएं। एक यही सोच बिछड़ने नहीं देती तुझसे, हम तुझे बाद में फिर याद न आने लग जाएं। एक मुद्दत से ये तन्हाई में जागे हुए लोग, एक मुद्दत से ये तन्हाई में जागे हुए लोग, ख्वाब देखें तो नया शहर बसाने लग जाएं।

कि मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हो जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं। मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी जान का वबाल होते हैं। तेरी तरह मैं दिल के जख्म छुपाऊं कैसे, कि तेरे पास तो लफ्जों के जाल होते हैं। बस एक तू ही तो सबब तो नहीं उदासी का, तरह तरह के दिलों को मलाल होते हैं। सयारात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, सयारात में जलते हैं जुगनुओं की तरह, दिलों के जख्म भी मोहसिन कमाल होते हैं।

लोग तो लोग थे, जी भर के खसारा करते। लोग तो लोग थे, जी भर के खसारा करते, कम से कम तुम तो ना नुकसान हमारा करते। कर तो लेना था तेरे साथ गुजारा, लेकिन अब तेरे साथ भी करते तो गुजारा करते। कर लिया था तो तवक्का नहीं रखते हमसे, इश्क था फर्श नहीं था के उतारा करते। एक बस हम ही मयसर थे तुम्हें गिरते समय, एक बस हम ही मयसर थे हमें गिरते समय।

खुद को अब आसरा देते कि सहारा करते। तो जी आप लोगों से इजाज़त लेने का वक्त आ चुका है। इस दुआ से यकीन के साथ आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि हर आने वाला कल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। जाने अनजाने में कोई भी बात आपकी समखराशी का सबब बनी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। इंसान है, इंसान होने के नाते गलती हो सकती है, लेकिन कतन मकसद नहीं होता कि आप लोग हर्ट हों। आई हैव अ वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए आज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, या आपने साबित करके दिखाना। डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है या तन्हाई ये न मालूम था हमें, करके तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें, आ जाना मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज़।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। तू सितारों से बहुत दूर है, मैं जानता हूं। अपनी मखलूक से मस्तूर है, मैं जानता हूं। लेकिन लेकिन एक राज से आगाह किए देता हूं, मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैं शनासा हूं तेरा, मैं तुझे जानता हूं। मैंने मासूम बहारों में तुझे देखा है, मैंने मोहूम सितारों में तुझे देखा है। मेरे महबूब, तेरी पर्दा नशीनी की कसम, तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है, मैंने अश्कों की कतारों में तुझे देखा है।

तुम जहां पे बैठ के जाती हो, जिस चीज को हाथ लगाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूं, उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, तुम कैसी मोहब्बत करती हो।

तुम जहां पे बैठ के जाती हो, जिस चीज को हाथ लगाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूं, उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं। तुम जिससे हंस के मिलती हो, मैं उसको दोस्त बनाता हूं। तुम जिस रास्ते पर चलती हो, मैं उससे आता जाता हूं। तुम जिनको देखती रहती हो, वो ख्वाब सराहने रखता हूं। तुमसे मिलने जुलने के कितने ही बहाने रखता हूं। तुम जिनको देखती रहती हो, वो ख्वाब सराहने रखता हूं। तुमसे मिलने जुलने के कितने ही बहाने रखता हूं। कुछ ख्वाब सजाकर आंखों में पलकों से मोती चुनता हूं। कोई लम्स अगर छू जाए तो मैं पैरों उसको सोचता हूं। जिन लोगों में तुम रहती हो, तुम जिनसे बातें करती हो, तुम जिनसे हंस के मिलती हो, जो तुमको अच्छे लगते हो, वही मुझको अच्छे लगते हैं। जिस बाग में सुबह को जाती हो, जिस सब्जे पर तुम चलती हो, जो शाख तुम्हें छू जाती है, वो जो खुशबू तुमको भाती है, जो खुशबू तुमको भाती है, वो ओस तुम्हारे चेहरे पर जो कतरा कतरा गिरती है, वो तितली छोड़ के फूलों को जो तुमसे मिलने आती है, जो तुमको छूने आती है, उन सब के नाजुक जज्बों में मेरे दिल की धड़कन बसती है, मेरी रूह भी शामिल रहती है। तुम पास रहो या दूर रहो, नजरों में समाई रहती हो। मैं तुमको तकता रहता हूं, मैं तुमको सोचता रहता हूं। मैं तुमको तकता रहता हूं, मैं तुमको सोचता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं, हर मौके पर, हर मंजर में मैं साथ तुम्हारे रहता हूं। मैं चश्मे तस्वुर में अक्सर बस तुमको देखता रहता हूं, बस तुमको सोचता रहता हूं। मैं चश्मे तस्वुर में अक्सर बस तुमको देखता रहता हूं, बस तुमको सोचता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं। तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम जहां पे बैठ के जाती हो, मैं वहीं पे बैठा रहता हूं। जिस चीज को हाथ लगाती हो, उस चीज को छूता रहता हूं। मैं ऐसी मोहब्बत करता हूं।

जिंदगी के मेले में, जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में, तुमसे क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। वक्त की रवानी है, वक्त की गरानी है, सख्त बेजमीनी है, सख्त लामकानी है, सख्त लामकानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है एक ही कहानी है। हिजर के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात उम्र भर की है, और उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं, उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में होती हैं। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आंख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, तुमने जो सजाया था आंख के दरीचे में। बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज के फसीलों पर टूट टूट जाता है, लफ्ज के फसीलों पर टूट टूट जाता है। जिंदगी से लंबी है बात, रत जगह की है, रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है, और तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है, प्यार करने वालों को एक निगाह काफी है। हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में, तुमसे क्या कहे जाना, क्या कहे जाना इस कदर झमेले में। मेरा नाम है आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप, रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन, जिसकी बराह रास्त नशरियात आपकी खूबसूरत समाजों की नजर कर रहा हूं। 12:32 हुआ चाहते हैं, 12:00 तो जनाब टेलीफोन लाइन अब आपके लिए खोल दी गई हैं, 9025402540 इस्लामाबाद, रावलपिंडी का सिटी कोड 051 यानी 051। तो जनाब ये नंबर डायल करके आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपके पैगामात का मैं जरूर मंतजर रहूंगा। 4471 पर आपने पैगाम भेजना है तो कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, मिस कॉल थी है। चलें जी दोबारा कोशिश कीजिएगा, और ये भी कोशिश कीजिएगा कि मुझे मेरे रिदम में रहने दें।

0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है?
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौन है, कहाँ से?
1: अच्छा, मैं रवाज से नसीम बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाए।
1: अगर मैं अश्क ना बहाती तो फिर समंदर हो जाता।
0: अच्छा, अगर मैं अश्क ना बहाती तो दिल समंदर हो जाता।
1: हाँ जी।
0: अच्छा,
1: कश्ती डगमगाती किनारा ना मिलता, मैं मर जाती अगर अश्क ना बहाती तो दिल समंदर हो जाता।
0: ये आपने खुद लिखी है?
1: जी
0: आपने खुद लिखी है?
1: जी खुद मैंने।
0: बिल्कुल ठीक है। चले जी, सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, बहुत शुक्रिया।

गमे इश्क रह गया है, गमे जुस्तजू में ढल कर वो नजर से छुप गए हैं मेरी जिंदगी बदल कर। तेरी गुफ्तगू को नासे दिले गमजदा से जल कर अभी तक तो सुन रहा था मगर अब संभल संभल कर। ना मिला सुराग मंजिल कभी उम्र भर किसी को, नजर आ गई है मंजिल कभी दो कदम ही चलकर। हैं किसी के मुंतजिर हम मगर ऐ उम्मीद मुबहम, कहीं वक्त रह न जाए यूं ही करवटें बदल कर। पर मेरे दिल को रास आया ना जमूद गैर फानी, मिली राह जिंदगानी मुझे मुझे खार से निकल कर। और मेरी तेज गामियों से नहीं बर्क को भी निस्बत, मेरी तेज गामियों से नहीं बर्क को भी निस्बत। कहीं खो ना जाए दुनिया, कहीं खो ना जाए दुनिया मेरे साथ साथ चलकर। और कभी यक बयक तवज्जो कभी दफदन तगाफुल, कभी यक बयक तवज्जो कभी दफतन तगाफुल, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल कर। मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल कर। गमे इश्क रह गया है, गमे जुस्तजू में ढल कर वो नजर से छुप गए हैं मेरी जिंदगी बदल कर। जी हजूर, ऐसा है कि ये खेल चलता रहता है, ये लुका छुपी का खेल। कुछ लोग बड़ी जल्दी उसको इश्क का नाम दे देते हैं, कुछ आगाज करते हैं उनसीयत से, फिर धीरे धीरे वो मोहब्बत में ढलता है और फिर जो इश्क होना चाहिए, जो इश्क का मकाम होना चाहिए वहां तक पहुंचता है तो ही उसको इश्क कहते हैं। लेकिन चलें यूं ही सही, जो उर्फ़े आम में इश्क है इसकी भी मनाजिल हुआ करती हैं, इसके भी कुछ मकाम हुआ करते हैं। ये लुका छुपी का खेल चलता है, कभी यक बयक तवज्जो कभी दफतन तगाफुल। इंसान बड़े अजीब हुआ करते हैं इस मामले में। हमें यूं लगता है कि जब हमारे मातहत कोई चीज़ आ गई है और जिस पर हमारा जोर आ गया है, वहां हम इंसान कभी बड़े जालिम हो जाया करते हैं। हम उसका मुकम्मल इस्तेमाल करना चाहते हैं और ऐसा मोहब्बतों में जब किया जाता है तो फिर किसी को तो सहना पड़ता है, किसी को तो बर्दाश्त करना पड़ता है और कर भी लिया करते हैं हम इंसान। और ये कैफियत वारिद हो तो फिर दर्द दर्द रहता नहीं है या दर्द दर्द लगता नहीं है। वो इंसान जो मुब्तला हो इस कैफियत में, इस मोहब्बत की कैफियत में, इस इश्क की कैफियत में, उसके महसूस करने के मानी बदल जाते हैं मामलात को। या यूं कहिए कि हिस्से लामिसा ही कुछ अलग से काम कर रही होती है। दर्द कम होने लगाओ कि कुछ रात कटे, गम की मियाद बढ़ाओ के कुछ रात कटे। यूं तो तुम रोशनी है कल्ब नजर हो, लेकिन आज वो मौजा दिखलाओ कि कुछ रात कटे। दिल दुखाता है वो मिलकर भी, मगर आज की रात उसी बेदर्द को ले आओ कि कुछ रात कटे। ऐसे दर्द को महसूस कर लिया करते हैं या कबूल कर लिया करते हैं। रमूज़े खाक ने तशहीर उदासी की, हमारा जिस्म है तामीर उदासी की। रमूज़े खाक ने तशहीर उदासी की, हमारा जिस्म है तामीर।

खुशामदीद कहते हों अपनी तरफ आते हुए हर कर्ब को, तो मालूम पड़ता है कि मोहब्बत से इश्क की तरफ उनका सफर आगाज हो चुका है। क्योंकि इस राह की तमाज़तें और सऊबतें जो बर्दाश्त करने लग जाते हैं, वो इस राह की मंजिल को भी पा लेते हैं, या फिर इस राह की तो कोई मंजिल होती ही नहीं। और कुछ कहते हैं कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। न जाने कब तेरे दिल पर नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है तो कोई आएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इन कैफियत में उतार चढ़ाव चलता रहता है, होती है तेरे नाम से वहशत कभी कभी, बरहम हुई है यूं भी तबीयत कभी कभी। ऐ दिल किसे नसीब ये तोफी के इज़्तिराब, मिलती है जिंदगी में ये राहत कभी कभी। और जोशे जनू में दर्द की तुगयानियों के साथ, जोशे जनू में दर्द की तुगयानियों के साथ, अश्कों में ढल गई तेरी सूरत कभी कभी। यूं चलता रहता है ये सफर और इश्क तक पहुंच जाते हैं। आंखों में जितने अश्क थे जुगनू से बन गए, वो मुस्कुराया और मेरी दुनिया बदल गया। शायद वफा के खेल से उकता गया था वो, मंजिल के पास आके जो रास्ता बदल गया। और अपनी गली में अपना ही घर ढूंढते हैं लोग, अमजद ये कौन शहर का नक्शा बदल गया, अमजद ये कौन शहर का नक्शा बदल गया। सफर आगाज हो जाता है मोहब्बत से इश्क की जानिब, और इंसान की वो तमाम हिस जो महसूस कर सकती है, जो देख सकती है, जो सुन सकती है, धीरे धीरे उसकी अपनी जात पर एक कुफल पड़ने लग जाता है। कुछ वारिद हो रहा होता है या इंसान उस कैफियत में ढलता चला जाता है, जहां वो कहता है कि रांझा रांझा कर दीवे में आपे रांझा हुई, रांझा रांझा आंखों नी मैनू हीर ना आखो कोई। अपना वजूद कहीं दूर पीछे छोड़ता हुआ इंसान, किसी और रंग में ढलता हुआ इंसान, उस एक कैफियत के जेरे असर, उसे एक कैफियत को महसूस करने की काबिश में कुछ हर्फ थे, कुछ नक्श थे, कुछ हर्फ थे, कुछ नक्श थे, एक जाल सा नक्शा नुमा। एक आयन था फिर शीन थी, कुछ आग थी कुछ राख थी, एक दश्त था एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी, फिर एक खला बेअंत साया, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियां तन्हाइयां, फिर काफ था, फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था। कुछ हर्फ थे कुछ नक्श थे, एक जाल सा नक्शा नुमा, एक आयन था फिर शीन थी, कुछ आग थी कुछ राख थी, एक दश्त था एक बहर था, सहरा भी था और प्यास थी, फिर एक खला बेअंत सा, एक बंद गली सा रास्ता, वीरानियां तन्हाइयां, फिर काफ था, फिर सारा मंजर राख था, सब खाक था। मेरी नजर के सामने एक तूर सा रोशन हुआ, एक तूर सा रोशन हुआ, जब हर्फ बाहम मिल गए।

फिर लफ्ज का उकदा खुला, वो इश्क था, वो इश्क था। फिर उसके बाद कुछ न था, मिला सुफेद हर सफा, कहीं भी जिक्र मन न तू, कहीं पड़ाओ ना सकूं, फकत फकत जुनू जुनू जुनू।

मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, जैसे सूरज की किरण सीप के दिल में उतरे, जैसे जैसे खुशबू को हवा रंग से हटकर चाहे, मैंने इस दौर से, जैसे पत्थर के कलेजे से किरण फूटती है, जैसे जैसे गुंचे खिले मौसम से हिना मांगते हैं, जैसे ख्वाबों में ख्यालों की कमान टूटती है, जैसे जैसे बारिश की दुआ आबला पा मांगते हैं, मैंने इस दौर से चाहा तुझे अक्सर जाना। मेरा हर ख्वाब मेरे सच की गवाही देगा, वो सते दीद ने तुझसे तेरी ख्वाहिश की है, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना, मेरी सोचों में कभी देख सरापा अपना। मैंने दुनिया से अलग तेरी परस्तिश की है, ख्वाहिश दीद का मौसम कभी धुंधला जो हुआ, नोच डाली है जमानों की नकाबें मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों की तनाबे मैंने, तेरी पलकों पे उतरती हुई सुबहों के लिए तोड़ डाली है सितारों की तनाबे मैंने। मैंने चाहा कि तेरे हुस्न की गुलनार फजा मेरी गजलों की कतारों से दहकती जाए, मैंने चाहा कि मेरे फन के गुलिस्तां की बहार तेरी आंखों के गुलाबों से महकती जाए, और तय तो ये था कि सजाता रहे लफ्जों के कवल मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, मेरे खामोश ख्यालों में तकल्लुम तेरा, रक्स करता रहे भरता रहे खुशबू का खुमार मेरी ख्वाहिश के जजीरों में तबस्सुम तेरा, तू मगर अजनबी माहौल की परवरदा किरण मेरी बुझती हुई रातों को सहर कर न सकी, तेरी सांसों में मसीहाई थी लेकिन तू भी चारा जख्मे गमे दीदाए तर कर न सकी, तुझको एहसास ही कब है कि किसी दर्द का दाग आंख से दिल में उतर जाए तो क्या होता है, तू कैसी माप तबीयत है तुझे क्या मालूम, मौसम हिजर ठहर जाए तो क्या होता है, तू कैसी माप तबीयत है तुझे क्या मालूम, मौसम हिजर ठहर जाए तो क्या होता है, तूने उस मोड़ पे तोड़ा है ताल्लुक के जहां देख सकता नहीं कोई भी पलट कर जाना, अब यह आलम है कि आंखें जो खुलेंगी अपनी याद आएगा तेरी दीद का मंजर जाना, मुझसे मांगेगा तेरे अहद मोहब्बत का हिसाब तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना, मुझसे मांगेगा तेरे अहद मोहब्बत का हिसाब तेरे हिजरा का दहकता हुआ महशर जाना, यूं मेरे दिल के बराबर तेरा गम आया है जैसे शीशे के मुकाबिल कोई पत्थर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे, मैंने इस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना।

0: मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। शब के 1:00 तकरीबन 3 मिनट हुआ चाहते हैं और आपका खूबसूरत साथ मुझे हासिल है। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है जनाब।
1: मैं बस थोड़ा सा स्लो ही बोल रहा हूँ क्योंकि असल में रात का पहर है।
0: अच्छा जी।
1: माशाल्लाह वो आपकी शायरी और अंदाज तो वो तो ऐसे है कि जैसे इंसान की रूह जो है ना वो हिल जाती है, मेरी तो हिल गई।
0: अच्छा, आपकी आवाज़ आहिस्ता हो गई है। हाँ
1: माशाल्लाह पूरा वो रूह पे कब्जा हो जाता है ना आप जैसे शायरी करते हैं।
0: ठीक है ठीक है,
1: क्या बात। और रात का ये शहर हो तो आपका प्रोग्राम और आपकी बात हो
0: सलामत रहे। आबाद
1: आपको सलामत रखे,
0: आबाद रहे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: मैंने कहा चले मैं बता दूं कि मैं भी सुनता हूं आपका प्रोग्राम का।
0: अच्छा किया आपने, अच्छा किया। सलामत रहे, आबाद रहे, खुश रहे।

मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूं, मेरी बात में क्या रखा है। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूँ, मेरी बात में क्या रखा है। बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, बांध रखा है तेरी याद ने माजी से मुझे, वरना वरना गुजरे हुए हालात में क्या रखा है। मेरी तकमील तेरी जात से ही मुमकिन है, तू अलग हो तो मेरी जात में क्या रखा है, तू अलग हो तो मेरी साथ में क्या रखा है। ये शब और रोज तेरे दम से ही ताबिंदा हैं, वरना इन गर्दिश हालात में क्या रखा है। और उम्र भर साथ निभाओ तो कोई बात बने, चंद लम्हों की मुलाकात में क्या रखा है। मेरे बेरब्त ख्यालात में क्या रखा है, मैं तो पागल हूं, मेरी बात में क्या रखा है।

दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। और जुदाइयों के जख्म दर्द जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया। पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गई वो सोहबतें, जमीन निगल गई उन्हें के आसमान खा गया। ये सुबह की सफेदियां, ये दोपहर की जर्दियां, अब आईने में देखता हूं मैं कहां चला गया। ये किस खुशी की रेत पर गमों को नींद आ गई, वो लहर किस तरफ गई, ये मैं कहां समा गया। गए दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, अलम कशो उठो के आफताब सर पे आ गया। वो दोस्ती तो खैर अब नसीब दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। जी हजूर, हम इंसान और वो इंसान जो इस मोहब्बत से आशना होते हुए इसको इश्क तक ले आते हैं, इस कैफियत से आशना होते हुए, वो भी अच्छे रहते हैं जो अंसियत तक इसको महदूद रखते हैं, फायदे में रहते हैं। जान रखा होता है शायद कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो वो कहते हैं कि जिस मंजिल को जाना नहीं है उसका रास्ता भी क्यों पूछें।

मैं दोस्ती के अजब मौसमों में रहता हूं, कभी दुआओं कभी साजिशों में रहता हूं। मैं जिस तरह से कभी दुश्मनों में रहता था, उसी तरह से अभी दोस्तों में रहता हूं। तुम्हारे बाद ये दिन तो गुजर ही जाता है, मैं शब को देर तलक आंसुओं में रहता हूं। इस मुसाफत में रखते सफर बांधते हुए मुसाफिर को मालूम होता है कि रास्ते की सोबतें क्या होंगी, तमाशतें क्या होंगी। तभी कहा गया था कि वो पिंजरा है ये, जिसमें हम अपनी मर्जी से अपने आप को कैद रखते हैं, जबकि इसका दरवाजा मुकफल नहीं होता। लेकिन वो क्या लज्जत है, वो क्या इत्मीनान है, क्या तमानियत है जो इंसान हासिल करने के लिए इस राह की तमाम तमाजतों को सहता चला जाता है। या रब, गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता। कि वो जो अनछुई चीजें हैं उनको अपने सामने रखकर, जिनको छुआ नहीं जा सकता, ऐसे जज्बात हुआ करते हैं, कुछ ऐसे लम्हे हुआ करते हैं जो बायस बन जाते हैं तस्कीन का, उनसे हज उठा लिया करते हैं ये लोग, इस राह पर चलने वाले लोग, हत्ता कि वो सरापा इश्क हो जाएं। ये जो मजाज का सफर है, ये इंसान को न जाने किस मंजिल की जानिब लेकर जाना चाहता है, जो उसको फना करता चला जाता है। लेकिन मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी। सरे महशर, भला तुझको परेशान कौन देखेगा। हर तमाजत कबूल हुआ करती है, बढ़ते चले जाते हैं बस इस राह पर, ना जाने किस उम्मीद पर, किस मंजिल की तलाश में। या शायद वो जो सरापा इश्क हो जाते हैं उनको मंजिल मालूम पड़ जाती है, और वो होते हैं बहुत चालाक, शायद बताते नहीं है किसी को कि वो मंजिल क्या है। लेकिन उनका झूमना और उनका उस राह पर बढ़ते चले जाना, उनका जुनून, उनकी जुस्तजू कुछ तो दिखाती रहती है हम जैसों को। अगर हम गौर करने पे आए, अगर हम महसूस कर सकें, तो कुछ ना कुछ नजर आ जाता है। और फिर ये मजाज से हकीकत का सफर लगता है। तो ये कैसे हो सकता है, हमारी गिरफ्त में ये बात आती नहीं है कि हम जो हज उठाते हैं, हम जो लुत्फ महसूस करते हैं, हमें जो तमानियत का हसूल होता है, उसकी कुछ हदूद हैं। वो इस दुनिया की हद तक, इस कायनात की हद तक महदूद हैं। वो हमारी ज़ात, हमारी अक्ल, हमारे वजूद की हद तक महदूद हैं। इनसे बाहर निकलकर हम किसी लज्जत को कैसे महसूस कर सकते हैं, हम इंसान क्या इतनी ताकत रखते हैं। हदूद ज़ात के सहरा में क्यों गवाओ मुझे, तुम्हारा ख्वाब हूं, तुम तो ना भूल जाओ मुझे। सबा की राह में टूटी टूटी गुलों की जंजीरें, सबा की राह में टूटी गुलों की जंजीरें, नमाज इश्क हूं, माबद में क्यों सजाओ मुझे। तमाम उम्र का हासिल है बेरुखी ही सही, जहे नसीब मुकद्दर को सौंप जाओ मुझे। बेनियाज होने तक का यह सफर इंसान को बहुत जोड़े रखता है।
एक एक जुम्बिश पर, एक एक हरकत पर नजर हुआ करती है, एक एक नजरे करम के इंतजार में हुआ करता है इंसान, यहां तक कि बेनियाज हो जाए, जब उसको कोई फर्क ना पड़ता हो, जब वो आरी हो जाता है, जब वो मुजमहिल हो जाता है। लेकिन वो हमें लगता है कि मुजमहिल हो रहा है। हकीकत में वो उस जज्बे, उस कैफियत में उतर रहा होता है जो मंजिल का तायुन कर लेने के बाद तारी करनी पड़ती नहीं है, होती चली जाती है। कोई हाथ होता है जो राह दिखाता चला जाता है, लेकिन वहां दो राह होती है, उस दो राहे पर इंसान खड़ा होता है। एक तरफ मजाज है और एक तरफ हकीकी सफर। और वहां दो राह होती है, उस दो राहे पर इंसान खड़ा होता है, एक तरफ मजाज है और एक तरफ हकीकी सफर।

0: कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे बैठेंगे। तुम अपने सुख की बात करो, हम अपने दुख की बात करें और उन लम्हों की बात करें जो संग तुम्हारे बीत गए, जो अहद खिजा की नजर हुए। हम शहर खराबा के बासी, तुम चांद सितारों की मलका। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे। इन सब जरूरतों के दामन में हम प्यार की खुशबू महकाएं, हम प्यार की खुशबू महकाएं। इन बिखरे मस्त नजारों को हम आंखों में तस्वीर करें, पत्थर पे गिरते पानी को हम ख्वाबों से ताबीर करें, और उस वक्त के डूबते सूरज को हम चाहत की जागीर करें। फिर अपने प्यार के जादू में इन लम्हों को जंजीर करें। कभी वक्त मिले तो आ जाओ, हम झील किनारे जा बैठे।
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

अब तो ख्वाहिश है ये। अब तो ख्वाहिश है ये दर्द ऐसा मिले, सांस लेने की हसरत में मर जाएं हम। अब तो ख्वाहिश है ये दर्द ऐसा मिले, सांस लेने की हसरत में मर जाएं हम। अब तो ऐसी आंधी चले जिसमें पत्तों की मानिंद बिखर जाएं हम। ऐसी ठोकर लगे कि जी ना सकें, ऐसी उलझे ये सीने में सांसें कि फिर हम दवा पीना चाहें तो पी ना सकें। कोई हमदम न राही न राहत मिले, कोई हमदम न राही न राहत मिले। एक पल का सहारा न चाहत मिले, अब तो ख्वाहिश है ये। अब तो ख्वाहिश है ये दश्त ही दश्त हो, नंगे पांव चले हम सरे बज्म शम्मा की मानिंद जले। जिसको चाहें उसे फिर ना पाएं कभी, छोड़ जाएं यूं चुपचाप दुनिया को हम। जिसको चाहें उसे फिर ना पाएं कभी, छोड़ जाएं यूं चुपचाप दुनिया को हम। ये दिल ये चाहे भी तो फिर ना आए कभी, दिल ये चाहे भी तो फिर ना आए कभी। अब तो ख्वाहिश है ये कि सजा वो मिले कोई सहरा किला या बयाबान हो, जिसमें सालों तलक कैद ही कैद हो, सालों तलक। अब तो ख्वाहिश है ये कि सजा वो मिले कोई सहरा किला या बयाबान हो, जिसमें सालों तलक कैद ही कैद हो। अपने अपने खालिक और मालिक से मैंने जो की बेवफाई, अपने खालिक को मालिक से मैंने जो की बेवफाई, वहां पे वो ना पैद हो, बेवफाई वहां पे वो ना पैद हो। इब्ने आदम की चाह के कड़े जुर्म में अपनी ही जात के खोखले भर्म में, अब तो ख्वाहिश है ये कि सजा वो मिले, रोए जाऊं तो चुप ना कराए कोई, रोए जाऊं तो चुप ना कराए कोई। दूर जंगल में या फिर किसी दश्त में हाथ पकड़े मेरा छोड़ आए कोई, अब तो ख्वाहिश है ये।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाजत लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो ख्वाहिश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं। हुजूर, ये जो जस्तजू की बात है, ये जो एक तड़प की बात है, ये जो एक मंजिल पर चलने की बात है, यूं है कि हम इंसानों के अंदर ये जस्तजू पाई तो जाती है, ये जज्बे पाए तो जाते हैं, लेकिन कहीं कोई तमाज़त दरकार हुआ करती है इन मुंजबिद जज्बों को पिघलाने के लिए। वो तमाज़त कुछ भी हो सकती है हमारे मिजाज के मुताबिक। ये दुनिया और इस दुनिया का ये सफर, ये जिंदगी का सफर हमें सब कुछ सिखाता चला जाता है। हम इंसानों को जो सबसे पहले इदराक होता है, जब हम ये सोचते हैं कि हम कौन हैं, वो इदराक यह हुआ करता है कि हम मखलूक हैं, हमें बनाया गया है, कोई खालिक है हमारा। जो इस सफर पर निकलते हैं, जिनके अंदर से आवाज आती है कि मैं कौन हूं, वो इसको शिद्दत से महसूस कर सकते हैं कि जो पहला ख्याल उभरता है वो मखलूक होने का हुआ करता है। तो फिर कोई है जिसने तख्लीक किया और जिसने ये जहन दे दिया, जिसने ये अकल दे दी, जिसने ये जज्बात दे दिया, जिसने ये दुनिया दे दी, यहां रंग बिखेर दिए, जिसने मुआशरती बना दिया और लोगों से मिलवा दिया, जिसने जबान पर जायके दे दिए और फल उगा दिया, जिसने आंखों में बसारत दे दी और इस कायनात में रंग बिखेर दिए, जिसने इस कायनात में मौसीकी बिखेर दी और हमारे कानों को समात दे दी, जिसने तमाजत को तख्लीक किया, जिसने खुनकी को तख्लीक किया, जिसने बादे सबा चला दी और हमें हिस्सा लामिसा दे दी। तो ये सफर जब आगाज होता है अंसियत से होता हुआ, मोहब्बत की राहों से गुजरता हुआ, इंसान जब इश्क तक पहुंच जाता है, जहां अपना वजूद उसको खत्म होता नजर आता है, दर हकीकत वो इंसान के अंदर की वो आजजी हुआ करती है, वो मासूमियत हुआ करती है जो लेकर वो इस दुनिया में आया था, जो उसको वदियत कर दी गई थी, जो नतीजा था उस एक वादा अलस्त का, जब उसने इकरार किया था कि तू मेरा रब है। और क्या अजीब बात है कि उस वादे को हमारे जहन से महव कर दिया गया और फिर हमें अपनी किताब के जरिए बता भी दिया गया कि ये वादा मैंने तुमसे ले रखा है। हम इंसानों के अंदर ये जज्बात रखकर हमें राहें भी दिखा दी गईं कि एक जुल्मात की राह है और एक नूर की राह है। ये भी बता दिया कि अनमत अलैहिम वाले कौन हैं और मग़ज़ूब अलैहिम वाले कौन हैं। ये भी बता दिया कि एक मैदान सजेगा, जज़ा और सज़ा होगी। ये भी बता दिया कि तुम मुश्किल में पड़ोगे तो मैं आसानी दूंगा। ये भी कह दिया कि कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये भी कहा कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, और ये भी कहा कि सब्र करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये भी कहा कि मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। ये भी कहा कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और फिर ये भी कहा कि मंजिल को तलाश करो। हमें भी जलवागाह नाज तक लेकर चलो मूसा, तुम्हें गश आ गया तो उसने जाना कौन देखेगा। जब इतने उकदे हमारे सामने खोल दिए गए और
फिर भी हम मंजिल को ना पहचान सके तो हम खसारे में हैं, और जमाने की कसम हम खसारे में हैं। वालसर, और जो ये जान लेता है फिर वो कहते हैं कि मैं नदामत करने वाले की कसम खाता हूं, और फिर वो कहते हैं कहें कि मैं तुम्हें इन जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाऊंगा, वो नूर वही नूर मंजिल है और वही नूर सब कुछ है, क्योंकि जमीन और आसमां में जो कुछ है उसी का है, वो रब है मशारिक का और मगारिब का। अल्लाह नूर समावाती वल्लर्स। तो ये सवाल, ये जुस्तजू जब इंसान के अंदर उभरती है कि एहदन सिरात अल मुस्तकीम, तो जवाब उसके सामने है अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक। फाल के तरीके पर जहां खोलना चाहे खोल ले, उसका जवाब मिल जाएगा। अनमता लेहिम वाले लोग कौन हैं, ये पहचानने में देर हो जाती है, उन सफों में शामिल होने में देर हो जाती है। हमारा ध्यान इबादात की तरफ रह जाता है, हम इस तरफ ध्यान नहीं कर पाते हैं कि वो जिन्होंने मोहब्बत बिखेरी है इस कायनात में, उनका पैगाम यह है कि मोहब्बत की जाए, उनकी सुन्नत पर अमल किया जाए, इस जज्बे को महदूद ना किया जाए। मोहब्बत की जाए उनकी महबूब खलकत से, और उन लोगों की सफों में खुद को शामिल कर लिया जाए जो अनमता अलैहिम वाले लोग हैं, जो सरापा इश्क हो जाते हैं, वो जो चालाक लोग हुआ करते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि अल्लाह नूर समावाती वल्लर्ज, और वो चले जाते हैं जुलमात से नूर की जानिब, कोई जात है जो उनको ले जाती है, और मुझ जैसे देखते रह जाते हैं। हम सूद और ज़ियां के चक्कर में लगे रह जाते हैं, नफा और नुकसान गिनते रह जाते हैं, और वो नफा और नुकसान से मुबर्रा झूमते चले जाते हैं उन राहों पर, मंजिल खूबसूरत हो तो राहों से मोहब्बत हो जाती है, और वो लोग तो राज जान चुके होते हैं जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ाते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के दुख से बचाते हैं, जो शहरे बेवफा में भी क्या वादे निभाते हैं, जो करके हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दिए दुआ के जिन मिलाते हैं, जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें मोहब्बत की निगाह ऐसी के जर्रे को गौहर कर दें, जो पत्थर खाएं देखें मुस्कुराएं थर गुजर कर दें, जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं, किसी की आंख के आंसू सितारों में बदल जाएं, वो जिनको देख के सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, वो जिनके अपने पांव में कई गिरदाब होते हैं मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं। अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, वो खैर बांटने वाले लोग, वो आसानी बांटने वाले लोग, वो अनमता अलैहिम वाले लोग, जो इश्क के तकाजों को समझ जाते हैं कि अगर अपने रब से मोहब्बत के दावेदार हैं तो मोहब्बत करनी होगी उसकी महबूब खलकत से,
کیونکہ عشق کے تقاضوں میں سب سے ضروری تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے. زندگی میں جو درکار ہو تقسیم کیجئے. خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹیے, آسانیاں چاہیے تو آسانیاں تقسیم کیجئے, خیر بانٹیے. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی زندگی پر. کچھ اچھا لگا ہو تو دست دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا, اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو معذرت چاہوں گا. سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے اتوار کی شب پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.

0: मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए।
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे।
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ
0: तो वो हमेशा इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझा कर ढेर कर दिया।
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको लहू और लाभ के लिए पैदा नहीं किया।
1: لَوْ